0: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf Rs. 4,999 mein. Aur paye free shock Android TV box worth Rs. 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर। 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी ईयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी इयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.

0: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paye free shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शराइत तो सवाबित लागू हैं।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर #दिलसेसरसब्ज दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा। 5

0: HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रूपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें. श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps Internet Speed 6 mahine ke liye. 500 All Net Minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शर्तें जवाबित लागू हैं।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL।
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
4: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

Assalamualaikum and Assalamualaikum Pakistan. Assalamualaikum FM 100 Lahore Radio Station से जितने भी सुनने वाली खूबसूरत समातें हैं सबको कहना चाहेंगे जी Assalamualaikum and Good Morning. सुबह अल खैर.

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: वन स्टेशन 100 FM।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

Welcome back. Jiji Nam here, your Arjuram Shehzadi. You are listening FM 100 Lahore radio station. आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं जी. बहुत आसान सा तरीका है जी, और तरीका ये है कि आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, LHR लिखना है, स्पेस देना और भेज देना है 3636 पे. एंड स्टे ट्यून, सुनते रहिए FM 100. और वो लोग जो इस वक्त किसी ना किसी बीमारी में मुबतला है, उन सबसे गुजारिश है कि अपने आप को कूल एंड काम रखें, क्योंकि ये मौसम ऐसा है. पानी पीते रहें और अपने आप को थोड़ा सा ठंडी प्लेस पे रखें, बिकॉज उम्र का हर हिस्सा आपको वो एनर्जी नहीं देता. सो प्रोग्राम का आगाज इसी खूबसूरत बात के साथ कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, इर्द गिर्द देखिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए. वी आर नाउ मूविंग टू अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग, आशीर्वाद एंड निमरा रॉय.

वेलकम बैक जी जनाब, है योर आज रम शहजादी, मेरा आपका साथ रहने वाला है ठीक दोपहर एक बजे तक के लिए। और इस साथ को बनाइए खूबसूरत, जल्दी से आ जाइए। 11 o'clock आई विल बी इंक्लूड योर ऑल द मैसेजेस। आप लोग 3-6-3-6 पे मैसेज कर सकते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, LHR लिखेंगे, स्पेस देंगे और भेज देंगे 3-6-3-6 पे, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं। जब भी अपना मैसेज भेजें तो हमें ये लिखना मत भूलें आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और आपका सिटी कौन सा है एंड व्हाट डू यू डू और आप क्या करते हैं। प्रोग्राम का नाम है जी स्टाइल हैंगओवर और मैं हूं आपकी आरजे रम शहजादी। अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपका सफर बहुत सहल और आसान गुजरे। इट्स 10:38 AM, मौसम जो है वो मौसम की सूरत हाल कुछ मिली जुली सी है। बारिशें हो रही थी लेकिन बारिशें कुछ थम सी गई हैं और मौसम भी थोड़ा सा गुमसुम सा हो गया है। इस मौसम में थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना, ओवर पानी का ओवरटेक नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप पानी का ओवरटेक करते हैं तो फिर आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं कि ऐसा आपको स्टमक आपका फुल सा लगता है, जैसे कि स्टमक जो है वो भारी पन सा हो जाता है स्टमक का। सो ऐसी चीज़ें खाएं जो डाइजेस्ट हो जाएं और बहुत ज़्यादा खाना और बहुत ज़्यादा भूख नहीं महसूस होती और इसकी वजह यही है कि हम लोग ज़्यादा चल नहीं पाते और मौसम के अंदर इतनी ज़्यादा नमी होती है कि हम बाहर सांस भी ले

हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. व्हेन आई वाज वर्किंग टू माय ऑफिस, मैं जब अपने ऑफिस आ रही थी तो मुझे भी बहुत जो है ना सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी, क्योंकि मौसम के अंदर बाहर कुछ टाइम के लिए अल्लाह ताला ने पहले हवा चला दी, दो चार दिन मौसम बेहतर रहा, फिर बारिश हुई और बारिशों ने पूरे लाहौर को ना चमका के रख दिया. कुछ दिन पहले मैं सफर कर रही थी तो मैंने देखा कि इतना उजला उजला क्यों लग रहा है सारा कुछ, तो फिर मुझे समझ में आया कि इन सबको हम लोग नहीं क्लियर कर सकते, ये वेदर इतना क्लियर है और मंजर इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है. तो फिर इस चीज का एहसास हुआ कि वो जो मालिक नीली छत वाला ऊपर बैठा है ना, वही इनका जिम्मेदार है. मैं ये सोच रही थी कि हम कहते हैं कि ये मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन पौधों से पूछ के देखें, पौधे जो हैं, दरख्त जो हैं, वो कितने खुश हैं और उनको कितना मजा आ रहा है ना कि उनको हर जगह से वो फूट रहे हैं, चाहे वो किसी पत्थर के नीचे क्यों नहीं है, लेकिन उनको पानी पहुंच रहा है, हवा पहुंच रही है और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. यानी कि आपकी बॉडी के अंदर भी जब बहुत ज्यादा आपको पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, आपकी बॉडी के अंदर से आपके फेस पे कील मुहासे एक्नी हो जाती है, तो इट्स मीन आपके अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा है वो सब बाहर निकल जाता है. सो इस मौसम को हम लोग बुरा तो जरूर कहते हैं, हम सब कहते हैं उफ कब खत्म होगा, इवन आई खुद से मेनी टाइम उफ कब ये टाइम खत्म होगा, कब ये मौसम अच्छा आएगा, बट ये मौसम अच्छा है और इसको स्पेंड करना अच्छा है. और मौसम तभी अच्छा होता है जब आपके अपने आपके साथ हों और आपके अपने आपको अच्छा टाइम दे रहे हो. क्या ख्याल है, सारे मौसम अच्छे हो जाते हैं जब आपके हालात अच्छे हों, जब आपकी जेब अच्छी हो, है ना. इन सारी चीजों का ताल्लुक इन सारी चीजों के साथ है ना, फाइनेंस के साथ भी है ना.

0: Welcome back. You are listening. आज जयराम शहजादी मेरा साथ रहने वाला आपके साथ ठीक दोपहर एक बजे तक का. और इस साथ को बनाइए खूबसूरत. जल्दी से आ जाए. आपने करना क्या जी? आपने अपने प्रोग्राम में सिर्फ क्या करना है जी? आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, लेटर लिखना है, स्पेस देना और भेज देना 3-6-3-6 पे. और हमारे प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं FM 100 को ट्यून करके. और जी अभी 11 o'clock हम आपके मैसेजेस शामिल करेंगे और ढेर सारे मैसेजेस हमारे पास आ गए. आप लोग भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. बस सिंपल सा तरीका है जी. आप लोग सुन रहे हैं जी FM 100 से स्टाइल हैंगओवर. मैं हूं आपके साथ आज रम शहजादी. और अभी जा रहे हैं हम एक छोटी सी टाइम चेक ब्रेक पे. 10:45 आई विल बी राइट बैक. डोंट गो ऑन अवे.
1: इट्स 10:45 AM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फिनिक्स बैटरीज.
2: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
4: वन स्टेशन 100 FM.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
4: वन स्टेशन
5: 100 FM.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.

0: और इस पतले पतले मौसम में थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। मैं वैसे कहना ये चाहूंगी कि इसमें आप सब्ज धनिया की चटनी और जैसे कहते हैं पुदीने की चटनी, ये सारी चीजें इनका इस्तेमाल जरूर करें, और साथ आप लेमन सोडा लीमू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें इस मौसम में, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे पसीना आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, तो आपकी बॉडी से बहुत सी नमकियात जो है वो बाहर आ जाती हैं और आपके अंदर लेथार्जिक होता है, आपका बीपी लो हो सकता है। तो अपने बीपी को थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए आपको इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। गो के मुझे पहले लेमन सूट नहीं करता था, बट नाउ यूज्ड लेमन, और ऐसी रेमेडीज जो कि आपको कभी नहीं आप अपने साथ नहीं आपने की, तो उनको मत कीजिएगा इस मौसम में स्पेशली, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखिए आप कोई ऐसा मौसम जो कि कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने खुल के नहीं आ रहे होते और आप ना तजबजस, यानी कि आप हिचकिचाहट का, आप हेजिटेशन का शिकार होते हैं, तो ये मौसम भी कुछ इस तरह से है। ये देखा जाए तो परिंदों के लिए या जैसे बेजान चीजें तो नहीं, खैर जानदार ही हैं हमारे जो पौधे हैं, जैसे कि हमारी ग्रीनरी है, हमारी नेचर के लिए ये मौसम जो है वो हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पौधे खिलखिला रहे होते हैं, ग्रीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, तो उनको देख के मजा भी आ रहा होता है कि ये कितने, जैसे किसी ने इनको पकड़ के बड़े अच्छे से धो दिया है, इतना खूबसूरत सारा माहौल लग रहा होता है। तो वहां ये सारी चीजें, जब पानी जमीन के अंदर जाता है तो जमीन से भी बहुत से ऐसे बुखाराज जो होते हैं, जैसे कह लीजिए कि ऐसी बहुत सी ऑक्सीजन्स जो है वो जमीन से भी खारिज होती हैं, तो उस टाइम आपको ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जो है उसकी कमी महसूस होती है, थोड़ी सी नमी महसूस होती है, और उस नमी में आपकी जो सांस की कमी है उसको थोड़ी हवादार जगह से आप जो है ना, वो थोड़ी हवादार जगह का इंतखाब करें। लेकिन अब क्या किया जाए कि शहरों में अगर देखा जाए तो घर जो है वो बहुत छोटे छोटे प्लेसेस हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उन सारी जगहों पे इन सारी चीजों के साथ लोग सर्वाइवल कर रहे हैं, तो उसमें आप सबसे गुजारिश ये है कि गंद ना फेंका करें, कूड़ा क्रिकेट ना फेंका करें, आप बहुत ज्यादा पानी का जो है वो बहाव ना किया करें, क्योंकि इस मौसम में ये सारी चीजें जो है ना वो एक जिसे कहते हैं डर्टीनेस फैलाती हैं। अगर आप देखें कि थोड़ी देर में ही चीजें रखें आप किचन के अंदर, आपका घर बंद है या आपका माहौल सारा बंद है, तो वो सारी चीजें स्मेल छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि एक दूसरे का ख्याल रखा करें, गलियों में भी गंद और कूड़ा क्रिकेट मत मचाया करें, और स्पेशली ऐसी जगह जहां से पानी का जो है वो पानी ड्रेन होता है, बारिशें आई हैं पीछे के, इतना बारिशों का मौसम रहा, रोड्स भर जाते हैं। देखिए हर काम हकूमती लेवल पे नहीं होता ना, हम लोग गंदी बहुत मचाते हैं। आज आपको नई रोड बना के दे दी जाए लेकिन आप लोग उसका ख्याल ही नहीं रखेंगे, किसी को ये सेंस ही नहीं होगी कि हमने खाना खा के कोई चीज खाई है तो रैपर उसका हमने डस्टबिन में डालना है, या आपके पास बैग होगा, शापर होगा, एटलीस्ट आपके कमीज में कोई पॉकेट होगी, आपकी शर्ट के साइड पे पॉकेट होगी, आप उसमें डाल लें और घर जाके फेंक दें। लेकिन हम लोग कहाँ ख्याल करते हैं इन सारी चीजों का, हम लोग तो जो खाते हैं बाहर गली पे फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, तो उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान यही होता है कि फिर जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, आप जहां कुछ भी खाते हैं आप सारा कुछ वहीं पे फेंक देते हैं। एक दफा मेरा गुजरना ट्रेन की पटरी से हुआ, तो आप यू कांट बिलीव दैट कि लोगों ने इतना गंद मचाया हुआ वहां पर भी, उफ अल्लाह, मैं मतलब इतनी क्या जरूरत है आप सब लोगों को कि आप लोग खा के अपने कपड़े भी, इवन आपके कपड़े भी वहां पर पड़े हुए हैं। सो इट्स नॉट गुड ना, इसका निजाम अब कहां कहां पर भी जो है ना पानी खड़ा है, तो कहां कहां पर वो एक चीज जो है वो वहां वहां पर जाएगी, जब आपको ये पता है कि आप मतलब एक चीज आपकी एक्सेस में नहीं है, तो क्या हम लोग सब मिलके भी इन सारी चीजों का जो है वो ख्याल नहीं कर सकते? बींग अ नेशन, बींग ह्यूमन, हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। 11 बज के आई विल बी राइट बैक, ब्रेक का टाइम है और फिर आके आपके मैसेज रीड आउट करते हैं।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: हेलो,
1: वेलकम बैक. जुराब है युवराज जुरम शेजारी. आप मुझे सुन रहे हैं FM 100 से. ड्राइव टाइम स्टार्ट हो गया जी. 11 o'clock 11:07 a.m.

वेलकम बैक जी जनाब, है योर आरजी रिम शहजादी, मेरा आपका साथ रहने वाला है ठीक दोपहर एक बजे तक के लिए. एंड आई एम हेयर विद ऑल ऑफ यू, और आप सब लोगों के साथ हूँ मैं जी, और आप सब और मैं हूँ आपके साथ ठीक दोपहर एक बजे तक के लिए. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड द मेन कोर्स. मेन कोर्स वो कहते हैं ना जी, मेन कोर्स आपका वो होता है जिस पे आपने पूरे प्रोग्राम की बिल्डिंग को मर्ज करना होता है. यानी जी आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है जी आप सब लोगों के साथ. मैं हूँ आरजे रिम शहजादी, आप मुझे सुन रहे हैं ठीक दोपहर एक बजे तक, मेरा आपका साथ होगा. और आज हम बात करेंगे जी, बात करेंगे हम आज. शुरू में ही हमने बात की कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती. क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं? ऑल ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी ऑन एफएम 100, जल्दी से बताएं. और आप सबके ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं. नाउ आई एम गोना जस्ट स्टार्ट रीड आउट. सबसे पहले जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मलिक मोहम्मद आदिल जी, हैव अ नाइस डे. आरजे रिम शहजादी, थैंक यू सो वेरी मच. और जी हमारे साथ है इब्राहिम नोहारी, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हमादुल्लाह हमारे साथ थे जी. जो शख्स अपने लिए सब मामलात में खुद को अल्लाह के हवाले कर दे, तो इसने एक मजबूत सहारा थाम लिया. नो डाउट, बिल्कुल यही बात है जी. जब आप खुद को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो समझ लें सब जो है वो आपका ओके है. आजमाइशें तो हमारे वली पैगंबरों पे भी आई हैं जी, हम पे भी आएंगी, हम क्या है. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ हमादुल्ला फ्रॉम क्वेटा, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो वेरी मच. लतीफ नूर हमारे साथ हैं जी, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. लतीफ कोसा फ्रॉम डेर गाजी खान, माशाल्लाह जी क्रिएट शो, थैंक यू सो वेरी मच. सागर अली हमारे साथ हैं, सलाम मैडम साहिबा, वालेकुम अस्सलाम. Hopefully you would be fine. Yes, alhamdulillah, I'm fine. Uma Singh ji hai India se, ji keh rahe hain Uttarakhand India se. Hamare saath hai Uma Singh ji aur unki biwi Devi Maheshwari, Shrimati Maheshwari Devi ki taraf se sabhi tamam doston ko namaskar. Assalamu alaikum ji. Wa alaikum assalam ji. Aur bahut acha lagta hai ji jab aap border ke us paar bhi hamare saath connect rehte hain. Phir aandhiyon ne jo manga जाने दिया, ना कुछ ख्याल किया मेरी जान, जाने दिया ये जानकर भी कि तपती दोपहर आएगी. तेरे फकीरों ने ये साहिबां जाने दिया. किसी ने हमसे कहा अपना सुख हमें दीजिए, सो हमने दिल का सुकून इत्मीनान जाने दिया. हमारा क्या था कि जिस पर हमें गरूर होता, जमीन जाने दी सो आसमान जाने दिया. वो अश्क लुटा के भी आबाद रहे हश्र तलक, जिन्होंने यार के सदके जहां जाने दिया. दैट्स वंडरफुल जी. राना इमरान राजपूत हमारे साथ हैं जी. अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फ्रॉम कराची, थैंक यू सो वेरी मच. वेलकम द कराची टू लाहौर, वेलकम फ्रॉम द कराची फ्रॉम द लाहौर. ओके जय शिव खान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम आरजे रिम जी. वालेकुम अस्सलाम. शौकत अली हैं जी, कह रहे अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अब्दुल रशीद फसल कॉलोनी चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ओके जी, जल्दी से प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए. बहुत आसान सा तरीका है. आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, LHR लिखना है, स्पेस देना है और भेज देना है 3636 पे.

0: ओके जी, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको कहना चाहेंगे जी, आप हमें FM 100 लाहौर रेडियो स्टेशन से सुन रहे हैं और इस टाइम टाइम हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ. आपने जाना कहीं नहीं है, सुनते रहिए FM 100.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फ़ालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है, तो ऐसी सर्विस फ़ाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें. इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें. अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि PTA के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है. अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें. जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है. इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें. शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं. मजीद मालूमात के लिए PTA के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA.
3: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
4: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: Welcome back. Assalamu alaikum. Once again, the people who are joining me at the time. Welcome back. Here you are, Zurum Shehzadi. आप मुझे सुन रहे हैं FM 100 लाहौर रेडियो स्टेशन से, और जनाब मैं हूँ आपके साथ ठीक दोपहर 1 बजे तक के लिए. 11 बज गए हैं तो अब हम आपके साथ मैसेजेस आपके पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने टॉपिक को भी अनाउंस करेंगे जी. आज का जो टॉपिक मैंने रखा वो यही था, आंख खुलते ही जब मैंने सोचा कुछ चीजों के बारे में, आपकी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द जो हालात और वाकयात होते हैं, अगर हम उन्हीं के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल में अच्छा होता है. अब वो चीज जो कि जिसका कोई वजूद ना हो, जो इमेजिनेशन में हो सिर्फ. और जो चीजें सिर्फ आपकी इमेजिनेशंस में हो वो हो रही हो और आप उनको यहाँ पर डिस्कस करें लोगों के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीजें कारामद होती हैं. हमेशा हमें उन्हीं चीजों पर बात करनी चाहिए जो हालात और वाकयात हम सारे फेस कर रहे होते हैं. मोहम्मद रजा चौधरी हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम. to the show. Shamsi Radio Listen Club Lahore Pakistan, Shamsi Saab, Imraza Chaudhry, Ehsan Khan, Sahuveer, Ehja, Zili, Faizan Nasir, Sajad Ali Ladla. Faiza Nasir, Rubina Jitti, Orji, Zuni Kamal Naz, Fariyapi, Budi Jat, Aur Latif Mughal, Salim Darzi, Srivale, Muhammad Tariq, Kavit Wale, Aur Niaz Driver, Amanat Guard, Abdul Hamid, Barfi Wale, Zahid Hassan, Sialkot, Radio Listen Club, Kijane, Assalamu Alaikum, Assalam. Acha, kitna maze ka lagta hai, aap ye, kabhi aapne note kiya hai, ke Pakistan mein waise ye qualities hain, ke aap kisi ko, kisi profession se bhi, uska naam rakh sakte hain. Wo, tumhe flanka bata hai, wo ye, jo Darzi hai, wo, jo Barfi Wale uncle hai, wo, jo chhabdi lagate hain, मतलब हम लोग इस तरह से भी किसी को प्रोनाउंस करते हैं. तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो पाकिस्तान में, आप दुनिया भर में कहीं भी घूम लें, पाकिस्तान इज पाकिस्तान. पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है. और इस 14 अगस्त में पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को. तो जनाब इस डेट को हम कैसे भूल सकते हैं. और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है. और जी देखें, बात आज का टॉपिक यही है कि आपको कुछ ना कुछ लाइफ में जो है ना वो छोड़ना पड़ता है, आपको निकलना पड़ता है. वो चाहे किसी का घर है, चाहे किसी का दिल है, चाहे किसी रिश्ते को छोड़ना है, या किसी का दिल दिमाग है. किसी मकान, किसी शहर, किसी दिल से निकलते हुए आप बहुत टूटे से होते हैं, ऐसा ही है ना. कैसा महसूस होता है आपको ये सारी तब्दीलियां जो आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, क्या आप इसमें अपने आप को इजिली एडजस्ट कर लेते हैं या फिर नहीं.

मलिक वसीम इकबाल हमारे साथ हैं जी। दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी मुस्कुराहटों को सलाम करते हैं, बन जाए आपकी जिंदगी नेमतों से जन्नत। ये दुआ हम सुबह शाम करते हैं। मोहम्मद रजा चौधरी साहब हमारे साथ हैं, द लेजेंड। थैंक यू सो वेरी मच।

एग्जैक्टली वी आर बैक. हम बात कर रहे हैं कि आपने किसी मकान, किसी रिश्ते, किसी के दिल से निकलना है, कुछ जगह छोड़नी है, तो आपको कैसा महसूस होता है. जियोग्राफिकली आपको चीजें जो है ना वो चेंज करनी पड़ती हैं, और चीजें चेंज हो जाती हैं. तब्दीली कायनात का एक रूल है, कुदरत का असूल है. क्या आप इन सारी चीजों को जल्दी छोड़ पाते हैं या फिर स्टक इन हो जाते हैं. रानक कदीर हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. हाउ आर यू? कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा. शौकत अली जी बिल्कुल सच फरमा रहे हैं आप.

0: मैं कुछ पूछ रहा हूँ।
1: वेलकम बैक राजारम शहजादी और जुनाब बा। कभी कभी आप बहुत सी चीज़ों में जो है वो उलझ जाते हैं, कुछ रिश्तों में, कुछ जगहों से आपको मोहब्बत हो जाती है, कुछ जगहों पे आप रहते हैं, स्पेशली आप किसी एक घर में रहते हैं उसके दरो दीवार से आपको मोहब्बत हो जाती है, और कुछ लोग इस चीज़ को भी आपके ऊपर सवाल बना देते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जिस जगह पे आपका मन लग जाता है, कुछ सड़कों से आपको प्यार हो जाता है, कुछ सराउंडिंग से आपको एक न जाना सा उंस हो जाता है। और जब कोई आपसे सवाल करे कि आप इस जगह को क्यों नहीं छोड़ना चाहते, तो क्या आपके पास कोई जवाब होता है? कुछ चीजों के जवाब नहीं होते।

वेलकम बैक जी जनाब, मैं युवराज जो मुझे आजादी जल्दी से आ जाए, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए एंड भी फलार नॉट है, वाई वाई वाई वाई क्या है जी, जल्दी से आए प्रोग्राम का हिस्सा बने क्योंकि प्रोग्राम जो है वो ठीक एक बजे तक खत्म हो जाएगा। सो Eleven thirty three here.

जबरदस्त जी, ये भी बहुत बड़ा टैलेंट होता है कि आप अपने अल्फाज को बड़े खूबसूरत और मेलेडियस वे में प्रेजेंट करें।

ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त है. मैंने ये रखा है कि आपको कोई भी चीज छोड़नी पड़े तो कैसा लगता है. तो सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास ये है कि देश जब बना, जब बड़े सगीर इकट्ठे थे, ठीक है, पाको हिंद इकट्ठे रहते थे और बहुत से मुसलमानों ने वहां से हिजरत की और हिजरत करके वो यहाँ पर आए, यानी पाकिस्तान एक अलग मुल्क की अनाउंसमेंट हुई. और उन तमाम कुर्बानियों के बाद जब एक मुल्क मिला, जब एक मुल्क को छोड़ना पड़ा तो कैसी फीलिंग्स थी. द पीपल ब्रोकन फ्रॉम द हार्ट, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जो जगह होती है वो आपका घर होता है और जब आपको घर छोड़ना पड़ता है ना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना होता है, तो यकीन कीजिए आप बहुत बिखरे होते हैं. उन सारी बिखरी चीजों को आपने अपने अंदर समेट के एक जगह से दूसरी जगह जाना है. एग्जैक्टली, फाइनेंस का भी बहुत इसमें हाथ होता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं. ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं आपको इन सारी चीजों में. लेकिन याद रखिए, एक चीज को छोड़ना, वो लोग जो बहुत कदर करने वाले हों, जो खालिस दिल रखते हों, जिनके पास खालिस दिल हो, खालिस नीयत हो, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है चीजों को लीव आउट करना. बट मैं कहती हूँ कि इस तरह अगर आप इतने स्ट्रांग हो जाएं, जब आपकी फैमिली, जब आपके पार्टनर्स आपकी बैक सपोर्ट हो, या आपके रिश्ते आपके साथ आपकी ढाल बन के खड़े हों, तो चीजें फिर आसान होती हैं. और जब आपको लगता है कि आप अकेले खड़े हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम अकेले खड़े हैं? We often forget our creator. हम अपने खुदा को भूल जाते हैं जिसने हमें पैदा किया होता है. जब पैदा नहीं हुए थे तब भी तो किसी एक जहां में थे, उस जहां को छोड़ के इस जहां में आए, और फिर जब इस जहां को छोड़ के उसी जहां में वापस जाना है, तो हर जगह रोना ही रोना क्यों है? हर जगह पे हम इन सारी चीजों का मातम क्यों करते हैं कि हमें एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को छोड़ना है, तीसरी को छोड़ना है. वो जगह हो, किसी का घर हो, किसी का दिल हो, किसी का मुल्क हो.

ओके जी, जल्दी से आ जाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। और ये बहुत ही खूबसूरत सा एक जैसे कहते हैं ओल्डी गोल्डी, एक नई सिंगर न्यासी मंजर जो है वो आज के लेजेंडरी पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत जैसे कहते हैं बहुत ही टैलेंटेड है, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको जो है वो मिक्सअप किया है पुराने गाने को। सो पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है, बस वही बात आ गई शुरू वाली। आसिफ खान है जी, नाइस शो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। द नीड ऑफ आर इज दैट कि आपने क्या करना है, आप और सबने मिलकर 2026 जो है वो जा रहा है और 2027 आ रहा है। सो पूरी दुनिया में ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेचैनी का ही मौसम है जी।

0: Welcome back to Janab Hai Rajaram Shehzadi Malik Wasim Iqbal Ji, what are you doing? PDS, these are all things you are sending. Kindly talk with us. Now, let's talk about it. If you want to talk about it, you have some words. If you have a lot of good experience, because we listen here, we read your message and we deliver to the people, we deliver to the public. So, जनाब आप ड्राइव कर रहे हैं या घर से निकले हैं सिर्फ कहीं काम के लिए ऑफिस के काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो हमारे पास है जी छोटी सी टाइम चेक ब्रेक. I'll be right back. जाना कहीं नहीं है, सुनते रहिए FM 100.
1: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix लगा और भूल जा. Phoenix लगा और भूल जा.
0: Welcome back. There was a little short break. I'm here. RJ Ram Shehzadi is with all of you. Mera program jo hai wo theek dopahar 1 baje tak aap sabke saath chalega. Aap log kya kar sakte hain? Aap logon ne apne mobile ke right message option mein jana hai, LHR likhna hai, space dena hai aur bhej dena hai 3636 pe. Aap log hamare program ka hissa ban sakte hain. जर्नल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जी आप सब लोगों के साथ. एनवायरमेंट की बात हो रही है और जितनी भी दुनिया में इन्वेंशंस हुई उनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट साथ साथ ऐसी इन्वेंशंस जो हम दिन ब दिन अपने साथ करते हैं, अपने एटीट्यूड, अपने रवैये, अपनी शख्सियत में करते हैं और देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है जिसमें हमारे बच्चे भी आ जाते हैं, जेन जी भी आ जाती है और क्या हो रहा है जी हमारे इर्द गिर्द. माहौल जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और माहौल के साथ साथ जितनी भी इन्वेंशंस हैं वो भी हमें इनफैक्ट हमें जैसे कहते हैं कि हमारे साथ हमारे ऊपर उन सारी चीजों का बहुत असर होता है. हम बहुत लेट किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वो कोई भी तब्दीली हो, ऐसा ही है ना, हम किसी भी तब्दीली को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. बिंग पाकिस्तानी मेरे ख्याल में, मेरा अपना मानना यह है, आप लोग बताएं आपकी राय क्या है. क्योंकि हम लोग ना रफ्ता रफ्ता किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हम कोई तब्दीली हो, कहीं किसी जगह से हमने कूच करना हो तो मेरे ख्याल में हम उन सारी चीजों को यकदम से नहीं करते, हमें हार्ट अटैक होना शुरू हो जाते हैं. ओह माय गॉड, इट्स जस्ट आई एम जस्ट किडिंग. मतलब हार्ट ब्रेक यानी कि छोटी छोटी बातों के साथ हम दिल को एसोसिएट कर लेते हैं. वी आर नॉट स्ट्रांग एनफ.

वेलकम बैक जी साहब, है यू आरजे रम शहजादी, मैं हूँ आपके साथ आरजे रम शहजादी। सर जनाब तबरेज खान हमारे साथ हैं जी, वो कहते हैं खुद पर एतमाद रखें, खुद पर तो ताकत बन जाती है, और अगर आप दूसरों पर मतलब इन्हसार करते हैं तो मजबूरी। देखें जी, कुछ लोगों के कमेंट्स, कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं कि जहां आप स्टॉप हो जाते हैं, आपके ही कमेंट्स पढ़ के कुछ लोगों की चीजें होती हैं जो आपके दिल पे असर करती हैं, आपके दिमाग पे। शायद कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द ऐसे हैं जिनकी बातें मेरे दिल दिमाग पे असर करती हैं, एंड दे आर नॉट सो मच एंड टू मच। बहुत ऐसा था कि पहले सबकी बातें अफेक्ट करती थी, सब का कुछ कहना दिल को खराब कर जाता था, लेकिन तब भी स्ट्रांगनेस थी कि यार क्यों, यार कोई बात करके जाए क्यों, किसी को मौका क्यों है ऐसा कि सब आए और बात करके लिख के चले जाएं। बट इतना, जैसे कहते हैं कि शायद एक्सपीरियंस नहीं था, मासूमियत का ओवरवेलम था। सो अगर वाकई एतमाद हम खुद पे रखें तो ताकत होती है, और अगर हम दूसरों पे अब खुद को ज्यादा फेंक दें, इन्हसार करें, तो मजबूरियां हो जाती हैं। और मेरे ख्याल में हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हमने अपनी वालदा को भी देखा तो समझौते ही हैं, समझौतों की जिंदगी गुजारी है, हमने माहौल ऐसा देखा, लेकिन बहुत हद तक खुद को मुख्तलिफ पाया, ज्यादा नहीं। जैसे कहते हैं क्वाइट डैम ऑपोजिट नहीं है, कुछ जीन्स के अफेक्ट्स आ जाते हैं और कुछ हम खुद भी डर जाते हैं और चीजों को खुद पे हावी कर लेते हैं। डर के आगे जीत है जी, और ये बात किसी ने झूठ नहीं कही बल्कि सच कही है, मौत के आगे ही जिंदगी है। हम लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारी मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे, लेकिन उसके आगे ही तो जिंदगी है। सो डोंट वाई आई एम देम सीरियस। मुझे शोर में लिपटी तन्हाइयां बेमानी रिश्तों की जंजीरें, नामो नमूद की चाप लोसियां बेहिस दोस्तों की संगत, और दिखावे से सजी महफिलें बिल्कुल कबूल नहीं। सो दैट्स व्हाई

All the people who you are listening to me. इंसान जिंदगी में सबसे खूबसूरत कब लगता है? हरी अब जल्दी से आंसर कीजिए. When you look glowing. भाई देखिए aesthetically अगर आप देखें तो आपने कोई फेस पे मास्क लगा लिया, कोई अच्छा सीरम लगा लिया तो यू नॉट ग्लोइंग ना, आप अच्छे नहीं लगते ना, मेकअप कर लिया ये वो सारी चीजें. बट इंटरनली जब आप खुद को अच्छे लग रहे हैं या कोई आपको कह रहा है कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल, बड़े चहचहा रहे हैं, चमक रहे हैं, कब लगते हैं आप खुद को अच्छे, या आपको कब लगता है कि आप अच्छे लग रहे हैं जिंदगी में? प्लीज प्लीज प्लीज हरी आप, मेरे पास तो आंसर है, आप लोगों ने आंसर करना है कि इंसान जिंदगी में सबसे खूबसूरत कब लगने लगता है. हरी आप जल्दी से, टाइम बहुत थोड़ा है जी. 11

वेलकम बैक। 11:57 AM और फिर हो जाएंगे 12 बजे का टाइम हो जाएगा और फिर जी हमें जाना होगा। और इससे पहले सॉरी 1 बजे का टाइम, तो 1 बजे से पहले आप सब लोग आ जाएं। और मैंने एक टॉपिक, एक लाइन दी है कि इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत कब लगता है। जफर सदीक हमारे साथ हैं जी, वो कह रहे हैं कि व्हेन शी और ही अचीव समथिंग। ओके, मान लेते हैं जी, मैं आई एम राइटिंग हियर, मेरे पास डायरी है और मैं लिख रही हूँ सबसे पहले किसने यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। सो जनाब जल्दी से बताइए कि इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत कब लगता है, या अपनी जिंदगी में वो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत कब लगने लगता है। मेरा ओपिनियन सबसे एंड पे होगा, बट जल्दी से आए और आप बताएं। जो तुम्हारी तकलीफ को अपनी जिम्मेदारी समझ ले, वही तुम्हारा हकीकी अपना है। दिस इज डैम ट्रू।

another my favorite song. बल्कि गजल है ये, जिसको आमिर अमीर एंड अब्दुल्ला फहीम ने, फहीम अब्दुल्ला ने अपनी खूबसूरत आवाज में इसको गाया है।

0: we are going to play a short little break. I'll be here. Don't go away. Don't move away anywhere. Stay tuned. Rassi Bandle FM 100 go. I'll be right back.
1: Cola Next. Ek mauka mere naam.
2: Ek sawal hai sirf women se. Agar aapko apne zindagi mein ek mauka mile, to aap us mauke se kya karengi?
1: अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगी, अपनी स्किल्स को आगे लेकर जाएंगी, या फिर अपने लिए वो नेक्स्ट स्टेप लेंगी जिसका आप बहुत अरसे से ख्वाब देख रही हैं। बिकॉज एवरी ड्रीम डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी, इसी सोच के साथ कोला नेक्स्ट लेकर आया है पाकिस्तान भर की विमेन के लिए एक मौका मेरे नाम। अब आपकी बारी है अपना ख्वाब और अपनी एस्पिरेशन शेयर करने की। अपनी एंट्री सबमिट करना बिल्कुल सिंपल है। विजिट करें www.colanext.com/entries। अपना आइडिया सबमिट करें और लकी ड्रॉ में ईवी बाइक जीतने का चांस पाएं। तो सिर्फ ख्वाब देखें नहीं, अपना ख्वाब शेयर करें। हो सकता है एक मौका आपकी जर्नी को एक नई रफ्तार दे। कोला नेक्स्ट प्रेजेंट्स एक मौका मेरे नाम। विजिट www.colanext.com/entries एंड सबमिट योर एंट्री टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सवाल आप लोगों से ये है कि जब आप कहीं पर जगह चेंज करते हैं, किसी के दिल से, किसी के घर से आपको हिजरत करनी पड़ती है, आप नकल मकानी को तरजीह देते हैं या हिजरत को? नकल मकानी होती है जी मजबूरी में, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है. हिजरत होता है जी आप कुछ चीजों को छोड़ के अल्लाह की राह में, यानी कि आपको वो हालात नजर नहीं आ रहे ऐसे, इन पे भी आप एक स्टेप ले लेते हैं और वहां से मूव ऑन हो जाते हैं, वो किसी का दिल हो, घर हो या रिश्ते हो. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, इंसान जिंदगी में कब खूबसूरत लगने लगता है? है तो ये सवाल सिंपल से, बट मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी थिंकिंग, आपका थॉट ऑफ स्कूल क्या है.

ओके जी, हम बढ़ते हैं अगले ट्रैक की जानिब एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रैक. इतने गाने, इतनी शायरी, इतने जिसे कहते हैं ना, बहुत चीजें, मतलब अभी तक की लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है. हर चीज मॉडर्नाइज हो गई और हम वो वाहिद लोग हैं कि हमें सब कुछ सुनने को देखने को मिलता है. हाँ, AI का दौर हम देख रहे हैं, जैमेनाई का दौर हम ये देख रहे हैं.

सागर अली कहते हैं जब किसी इंसान की वजह से किसी दूसरे के चेहरे पे खुशी आए और किसी को जिंदगी के अंधेरों में रोशनी आए, देन मैन बिकम्स ब्यूटीफुल. ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. देख कर जान ये तेरा चेहरा अपनी किरने समेट लेता है, तेरा एक आन का तबस्सुम भी कितनी कलियों को रंग देता है.

वेलकम बैक। जितना आप जल्दी से आ रहे हैं, प्रोग्राम कैसा बन रहा है? मेरा आपका साथ रहने वाला है ठीक दोपहर 1 बजे तक के लिए, और साथ में जो है टाइम थोड़ा सा रह गया, और टाइम इतना ज्यादा नहीं होता कि आप लोग जो है ना वो इतनी देर लगा के आए। तो आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से आ जाए, प्रोग्राम कैसा बन रहा है, बिकॉज प्रोग्राम जो है वो खत्म होने की जानिब जा रहा है। ओनली 20 मिनट्स आर लेफ्ट, क्योंकि 12:13 हो गए, पहले 12:12 थे, फिर 12:13 हो गए, और फिर 12:15 हो जाएंगे, और फिर ब्रेक होगा, और ब्रेक के बाद फिर 12:30 का ब्रेक, एंड ब्रेक के मिला के जनाब कहते हैं ना, दिन ते रात पाके इन्ना टाइम तो ब्रेक का मिला के थोड़ा ही टाइम है जी, जल्दी से आ रहे हैं।

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe Single Remedies, मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. Dr. Hamid General Homeo और Schwabe Single Remedies, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

welcome to our show. एक नन्ना सा सितारा हमारे साथ है. उसका कहना है कि इंसान तब खूबसूरत लगता है जब वो दिल से मुस्कुराता है. क्या आप सब लोग एग्री करते हैं कि इंसान तब खूबसूरत लगता है जब वो दिल से मुस्कुराता है? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सच तो है. सजना, वी आर टुडे डिस्कस दैट कि जब आपको किसी जगह को छोड़ना हो, किसी के दिल, किसी रिश्ते को छोड़ना हो, तो हम लोग बड़े टची से हैं. हम लोग जो है वो दिल के दर्द लेके बैठ जाते हैं. गालिब, मेर दर्द सारे याद आ जाते हैं. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि इंसान जिंदगी में सबसे खूबसूरत कब लगने लगता है? मेरे पास भी मेरा ओपिनियन है, बट आई वॉन्ट टू नो. मैं आप सबका जिसे कहते हैं ना, आप सबका जानना चाहती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू. देन आई विल शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू.

दिल ने सिर्फ एक दुआ मांगी थी और उस दुआ का नाम तुम निकले। वाह, साढ़े जब्द ते जब्द दा जब्द तिड़ा सागर अली, कुड यू प्लीज राइट इन इंग्लिश? रोमा जी, तुम मिले तो लगा दुआओं ने रंग ला दिए, वरना जिंदगी ने कब मुस्कुराना सीखा था। वाह वाह तबरेज़ खान, वंडरफुल लाइंस।

Welcome back, Jujnav here, your Algerian Shehzadi. 12:33 हो गए हैं 33. कुछ लोग जो हैं वो बोलने में उनकी जो है ना वो कुछ चीजें खराब होती हैं और मैं हमेशा खराब चीजों को सही करती रहती हूँ. पता नहीं मेरी ये ड्यूटी है. वो घर में चाहे कोई चीज है या वो फिर लाइफ में कोई ऐसे इंसान है. अच्छा, मैं पहले सोचा करती थी कि मेरे जिम्मे काम क्या है, अल्लाह तुमने मुझे क्यों भेजा. आज मेरे मुंह से खुद ही निकल गया कि मैं खराब चीजों को सही करती रहती हूँ. इज दैट ट्रू कि आप लोगों की लाइफ में भी कभी ऐसा होता है कि आपके इर्द गिर्द सारी चीजें खराब होती हैं? अब जो जिन जिन जगहों पे हम जाते हैं वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ब्लॉक होती हैं, या कहीं पर किसी जगह पे हम जाते हैं तो चीजें ब्लॉक हो जाती हैं. अब हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी ये पनौती हैं, ये इनके आने से ये हो गया वो हो गया, जी ये तो मनहूस, उर्दू में कहा जाता है जी ये मनहूस है. ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, हम बहुत से अपने रिश्तों को, बहुत से लोगों को ऐसा कह रहे होते हैं. बहुत सी बच्चियां आती हैं ऐसी मेरे पास जिनको ये टैग मिलते हैं, अगर उनकी आगे पीछे माँ बाप ना हो तो. मतलब उनको इतना हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इतना उनका जो है ना वो लेट डाउन किया जाता है कि उनके दिल दिमाग में ये बात बैठ जाती है. मोहम्मद इब्राहिम सोमरा हमारे साथ हैं. जी कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम शहजादी साहिबा, क्या हाल है और मौसम कैसा है बहुत बिट शाह सिंध से? जी मौसम तो बहुत घुटा घुटा सा है. आप बताएं बिट शाह सिंध में कैसा है, कराची में कैसा है? हर जगह से आप लोग हमें सुन रहे हैं तो हमें बताइए कि आपके यहाँ मौसम कैसा है. बारिशें हो रही हैं क्या, आप लोग सेफ हैं और सैलाब की सूरत हाल तो नहीं है? क्योंकि बारिशें अभी थम गई, क्योंकि बहुत स्टार्ट में बहुत बारिशें हो गई बट अभी थम गई. तो आप लोग बताएं कि आपके यहाँ कैसा मौसम है और क्या सूरत हाल है, क्या आप लोग सेफ हैं और आपके इर्द गिर्द. मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में ही एक बात कर रही थी कि हम लोग जो है ना खुद चीजों को खराब करके और फिर कहते हैं पता नहीं कैसे खराब हो गई है. अब हमने एक चीज खाई है और हमने उसका रोड पे रैपर फेंक दिया, घर का कूड़ा है निकाल के बाहर हमने फेंक दिया और हम कहते हैं जी हमारे जो है वो परनाले, छतें हैं, छतों के परनाले जिसे कहा जाता है पंजाबी में, नाले परनाले या गटर के जो ढक्कन हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, सुराख बंद हो जाते हैं और रोड्स पे इतना पानी होता है कि बस मैं कहती हूँ पानी ही पानी नजर आता है और कितनी जिंदगी जो है रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो खराब हो जाती है. तो हर चीज जो है गवर्नमेंट लेवल पे ही सारी ठीक नहीं होनी होती, इंसानियत के लेवल पे भी आके देखें हम सब ने सारा कुछ सही करना होता है. हम लोग बहुत गंद मचाते हैं, हम बहुत खा पी के अपने इर्द गिर्द फेंक देते हैं. तो बाहर अगर हम, हाँ इस जगह पे बात की जाए कि हम बाहर के मुल्कों की बात करें, वहां पे इन्वेंशन हैं वो तरक्की याफ्ता क्यों

खा भी के अपने इर्द गिर्द फेंक देते हैं। तो बाहर अगर हम, हाँ इस जगह पे बात की जाए कि हम बाहर के मुल्कों की बात करें, वहां पे इन्वेंशन हैं, वो तरक्की याफ्ता क्यों हैं? क्योंकि उनके लोग जो है ना तहजीबी याफ्ता हैं। वहां पर कूड़ा क्रिकेट जो है ना ऐसे फेंका नहीं जाता, कानून लागू होता है। वो चाहे कोई इंसान है, वो चाहे कोई रोड है, वहां पर सबकी वैल्यू एक जैसी है ना। तो वहां पर आप कह लें किसी इंसान के साथ ज्यादती हो सकती है, ना ही किसी रोड के साथ। तो भाई वो सारे तरक्की याफ्ता लोग हैं। यहाँ तो रोड और इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे हम रोड पे खा पी के फेंक देते हैं, ऐसे ही हम इंसान को भी कूड़ा क्रिकेट समझते हैं। और एक इंसान को हम पकड़ के इतना लेट डाउन करवाते हैं, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो हम उससे जीने का हक छीन लेते हैं। ओके जी, ब्यूटीफुल क्लाउडी वेदर इन जंग। और इधर सागर अली कह रहे हैं जंग में बहुत जबरदस्त मौसम है। ओके जी, इधर कल परसों बहुत जबरदस्त बारिशें हुई थी, इस टाइम भी बादल छाए हुए हैं। मोहम्मद इब्राहिम सोमरो बिटशा सिंह से हमारे साथ, बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग हमारे साथ अपना कीमती वक्त जो है वो गुजारते हैं, और वहां से यहाँ की इन्फॉर्मेशन और यहाँ से वहां की इन्फॉर्मेशन इधर उधर जाती है, यूं मिलके अच्छा टाइम गुजर जाता है। सो जल्दी से आप लोग मेरे इस प्रोग्राम का जो सुनवाई है वो आगे से आगे पहुंचा दीजिए कि जी आज हमारा शो हो रहा है। और

हम जा रहे हैं एक और ट्रैक पे, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, जाना नहीं है, बिकॉज अभी चंद मिनट हैं जिसमें हम ठहर के बात कर सकते हैं.

मैं हूँ मेरा गैर मेरे किस काम के। सो दैट मैं हूँ मेरा गैर मेरे किस काम के, दैट्स वंडरफुल। और ये बड़ी ब्यूटीफुल लाइन है और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, रियलिटी बेस्ड लाइन है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। तो ये उन्हीं सारी लोगों के नाम और मेरे नाम के, जी मैं हूँ मेरा गैर मेरे किस काम के, एंड इसमें डिफाइंड भी है। देखिए आपके रिश्ते जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ बात और किसी तर्ज में हो रही है।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
1: अजान ज़ोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो गया है।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, और देखो नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ तावुन न करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। सूरह मायदा।
2: FM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: कोला नेक्स्ट, एक मौका मेरे नाम।
2: एक सवाल है सिर्फ विमेन से, अगर आपको अपनी जिंदगी में एक मौका मिले तो आप उस मौके से क्या करेंगी?
1: अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगी, अपनी स्किल्स को आगे लेकर जाएंगी, या फिर अपने लिए वो नेक्स्ट स्टेप लेंगी जिसका आप बहुत अरसे से ख्वाब देख रही हैं? बिकॉज एवरी ड्रीम डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी। इसी सोच के साथ कोला नेक्स्ट लेकर आया है पाकिस्तान भर की विमेन के लिए एक मौका मेरे नाम। अब आपकी बारी है अपना ख्वाब और अपनी एस्पिरेशन शेयर करने की। अपनी एंट्री सबमिट करना बिल्कुल सिंपल है। विजिट करें www.colanex.com/entries। अपना आइडिया सबमिट करें और लकी ड्रॉ में ईवी बाइक जीतने का चांस पाएं। तो सिर्फ ख्वाब देखें नहीं, अपना ख्वाब शेयर करें। हो सकता है एक मौका आपके जर्नी को एक नई रफ्तार दे। कोला नेक्स्ट प्रेजेंट्स एक मौका मेरे नाम। विजिट www.colanext.com/entries एंड सबमिट योर एंट्री टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: Lahore. Get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
7: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाइए,
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें. वेट से आगे का सोचें.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: 100 FM.
10: छम छम छम, किताबे लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: I love it.
1: आयो घबराना नहीं, यहाँ नहीं पढ़ सकती कोई रे, खत्म हो गया।

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: 100 FM।
4: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

आम चीजों पर समझौता क्यों करें। श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: एंड
1: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनाम.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
3: अजाने असर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से.
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एफएम 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. लाहौर और उसके मजाफात में नमाज असर का वक्त हो गया है.

0: FM 100 HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ई मेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। pta.txt महफूज है, लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
2: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
1: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
0: What effect?
2: Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
3: to filming,
2: to flying.
4: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
5: The UMT Effect. Step into tomorrow, today.
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
8: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
11: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
12: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाए सिर्फ रुपीज 4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ रुपीज 15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें जवाबित लागू हैं।
13: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी इयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
14: 100 FM।
15: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
1: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
0: What effect?
1: Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
0: to filming,
1: to flying.
2: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact, an effect.
3: The UMT Effect. Step into tomorrow today.
4: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
5: One Station
6: 100 FM.
4: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
7: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं तो इंतजार किस बात का अभी डिपॉजिट करें और जीतें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
8: PTCL Flash Fiber Azadi Offer Lagayein sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000 free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye 500 all net minutes aur bahut kuch to aaj hi naya connection lagayein call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein terms and conditions apply sharaat zawabit lagu hain
5: one station
6: 100 FM
4: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
0: I just don't want to end up somewhere that feels the same
1: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
0: What effect?
1: Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
0: to filming,
1: to flying.
2: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact, an effect.
3: The UMT Effect. Step into tomorrow, today.
9: 100, where it's all about more. More Barnburn.

0: your location for maximum music.
1: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
2: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
1: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
2: to filming,
1: to flying.
2: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact, an effect.
3: The UMT Effect. Step into tomorrow today.
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केटप्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खार वहां HBL
7: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
9: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं तो इंतजार किस बात का अभी डिपॉजिट करें और जीतें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
10: PTCL Flash Fiber Azadi Offer Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000 free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye 500 all net minutes aur bahut kuch to aaj hi naya connection lagaye call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare terms and conditions apply sharaat aur zawabit lagu hain
11: Step Schools se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. We make learning fun from primary years education through STEAM approach. Taake aapka bachcha develop kar sake strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
12: कोला नेक्स्ट एक मौका मेरे नाम
13: एक सवाल है सिर्फ विमेन से
12: अगर आपको अपने जिंदगी में एक मौका मिले तो आप उस मौके से क्या करेंगी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगी अपनी स्किल्स को आगे लेकर जाएंगी या फिर अपने लिए वो नेक्स्ट स्टेप लेंगी जिसका आप बहुत अरसे से ख्वाब देख रही हैं बिकॉज एवरी ड्रीम डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी इसी सोच के साथ कोला नेक्स्ट लेकर आया है पाकिस्तान भर की विमेन के लिए एक मौका मेरे नाम अब आपकी बारी है अपना ख्वाब और अपनी एस्पिरेशन शेयर करने की अपनी एंट्री सबमिट करना बिल्कुल सिंपल है विजिट करें www.colanex.com/entries अपना आइडिया सबमिट करें और लकी ड्रॉ में ईवी बाइक जीतने का चांस पाएं तो सिर्फ ख्वाब देखें नहीं अपना ख्वाब शेयर करें हो सकता है एक मौका आपकी जर्नी को एक नई रफ्तार दे कोला नेक्स्ट प्रेजेंट्स एक मौका मेरे नाम विजिट www.colanext.com/entries एंड सबमिट योर एंट्री टुडे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत और जवाबित लागू हैं।
6: 100 FM।
7: चम चम चम, किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स आर साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग आवर ड्रीम्स, लाइव्स एंड आवर फैमिलीज। The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: Yeh paigham hukumat Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: Broadcasting from the highest tower with the lights on, so planes won't hit it. FM 100. 100. 100. 100.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ही है जिसके लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, वही जिंदगानी बख्शता वही मौत देता है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। सूरह तौबा।
2: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL, एंड
5: एंड सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात।
6: आई जस्ट डोंट वांट एंड अप समवेयर दैट फील्स द सेम।
7: इट्स नॉट द सेम ब्रो, इट्स डिफरेंट, इट्स एन इफेक्ट।
6: व्हाट इफेक्ट? एवरीथिंग इज अबाउट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, फ्रॉम फैशन टू फाइनेंस टू फिल्मिंग to flying.
7: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
8: The UMT effect. Step into tomorrow today.
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
10: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
11: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
13: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
14: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
15: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
17: This is your music.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फॉल करने के लिए दर्ज जेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनोर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
3: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
6: Biggest hit.
5: Only on your favorite radio. FM 100. 100. 100.

0: Nobody controls me. I am uncontrollable. The only thing that can control me
1: turn it up!
0: Is music. Is music. FM 100.
2: FM 100.
3: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
4: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
5: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
4: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
5: to filming,
4: to flying.
5: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact, an effect.
6: The UMT Effect. Step into tomorrow, today.
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
8: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
9: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस तो देर किस बात की हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना
10: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं तो इंतजार किस बात का अभी डिपॉजिट करें और जीतें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
11: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
5: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
8: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
6: आइए वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
11: 100 FM।
12: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's not just music, it's an addiction. FM 11100.
1: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
2: laga aur bhul ja. I just don't want to end up somewhere that feels the same.
3: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
2: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
3: to filming,
2: to flying.
3: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
4: The UMT effect. Step into tomorrow, today.
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagayein sirf ₹4,999 mein. Aur paayein free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps Internet Speed 6 mahine ke liye. 500 AllNet Minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शर्तें जवाबित लागू हैं।
1: HPL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HPL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HPL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
4: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
3: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
4: to filming,
3: to flying.
4: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact, an effect.
5: The UMT Effect. Step into tomorrow today.
6: This is your

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शरायत जवाबित लागू है।
2: One station. 100 FM.
0: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा ₹5,00,000 तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: दिस इज योर म्यूजिक।

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026. Where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
3: छम छम छम किताबें लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं, ये लोग बड़े दूर की गुमराही में हैं। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वो अपनी कौम की जबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम इलाही खोल खोल कर बता दे, फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। सूरह इब्राहिम।

महीने के लिए 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शर्तें तो सवाबित लागू हैं।